ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 8 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने बृहस्पतिवार को बताया कि निर्देशित मिसाइलों से लैस उसके 3 विध्वंसक पोतों पर ईरान की ओर से बिना किसी उकसावे के हमला हुआ है। कमान के अनुसार सभी खतरों को बेअसर कर दिया गया है और जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। केंद्रीय कमान ने बताया कि ये जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से ओमान की खाड़ी की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें ईरानी मिसाइलों, ड्रोन विमानों और छोटी नौकाओं ने निशाना बनाया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, कमान केंद्रों और निगरानी सुविधाओं पर हमले किए। अब तक इससे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज़ को बताया कि ये सैन्य कदम महज एक हल्का सा प्रहार था। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम अब भी लागू है। उधर ईरान के कई मीडिया केंद्र इससे अलग खबर दे रहे हैं। मीडिया केंद्रों ने सेना की केंद्रीय कमान के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि अमेरिका ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। प्रवक्ता के अनुसार अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य की ओर जा रहे एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया और संयुक्त अरब अमीरात के फुजायरा बंदरगाह के पास एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के अधिकारी अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति योजना पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से इस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अब तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हालिया वार्ता में शत्रुता समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी प्रस्ताव पर अब भी विचार किया जा रहा है।

विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार के साथ फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट में अरागची ने शांति योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। रॉयटर्स के अनुसार दोनों पक्ष एक अस्थायी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। रॉयटर्स का कहना है कि ये किसी व्यापक समझौते की बजाय एक अल्पकालिक ज्ञापन होगा। समाचार पत्र के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित सभी विवादित मुद्दे अनसुलझे रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन से चर्चा की और वे दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। होर्मुज जलडमरू मध्य की व्यावहारिक नाकाबंदी के बीच जापान और यूरोपीय संघ ने अहम समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने के मुद्दे पर सहयोग की पुष्टि की है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बृहस्पतिवार को ब्रसल्स में उच्च स्तरीय आर्थिक संवाद नामक मंत्री स्तरीय बैठक के लिए एकत्र हुए। बैठक में जापान के अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसे और यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं औद्योगिक नीति के प्रभारी स्टेफान सेजुर्ने ने भाग लिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि जापान और यूरोपीय संघ ने सुरक्षित नौवहन और अहम समुद्री मार्गों व बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सहित निर्बाध व्यापार प्रवाह के महत्व की पुष्टि की। वक्तव्य के अनुसार जापान और यूरोपीय संघ ने निर्यात नियंत्रण उपायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित, गैर भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं तौर तरीकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का महत्व दोहराया। वक्तव्य के अनुसार इससे विशेष रूप से अहम खनिज आपूर्ति श्रृंखला सहित सामरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान से बचने में मदद मिलेगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: एक अमरीकी व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में जो 10% का वैश्विक आयात शुल्क लागू किया था वो अवैध है। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ये फैसला सुनाया। ट्रंप प्रशासन ने व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग करते हुए कई देशों और क्षेत्रों पर ये शुल्क लगाया था। फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप के व्यापक वैश्विक शुल्क रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ये शुल्क प्रतिस्थापन उपाय के रूप में लागू किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि तथाकथित परस्पर शुल्क सहित व्यापक शुल्क लगाने के लिए ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम को लागू करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। धारा 122 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बड़े और गंभीर व्यापार घाटे से निपटने के लिए 150 दिनों तक 15% तक का शुल्क लगा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रंप धारा 122 लागू करने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। जापान में इस साल खसरे के मामलों की संख्या 400 का आंकड़ा पार कर गई है, जो 2019 में इसी अवधि में दर्ज संख्या के लगभग बराबर है। गौरतलब है कि 2019 में दशक के सर्वाधिक मामले सामने आए थे। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस से होता है जो हवा से फैल सकता है। इससे बुखार, खांसी और त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं और गंभीर मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। जापान स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थान के अनुसार 26 अप्रैल तक के एक सप्ताह में खसरे के 68 मामले सामने आए, जिससे इस वर्ष कुल मामलों की संख्या 436 हो गई। संस्थान का अनुमान है कि इनमें से 70% लोग जापान के बाहर से आए वायरस से संक्रमित हुए। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जापान में खसरे के पूर्ण उन्मूलन की पुष्टि की थी। उत्तरी जापान के पहाड़ों में बेहोश पाई गई एक महिला की मौत हो गई है। मौत का कारण भालू का हमला हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इवाते प्रीफेक्चर के

0: प्राची मानताई शहर की 69 वर्षीय कुमा गाय चियो को बुधवार को जड़ी बूटियां चुनने पहाड़ी जंगल में गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। पुलिस और बचाव दल ने बृहस्पतिवार सुबह उस जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया, जहां महिला की कार खड़ी मिली। सुबह करीब 8 बजे उन्हें वो महिला जमीन पर पड़ी मिली। महिला के चेहरे और सिर पर चोटें थीं, जो किसी वन्य जीव के पंजों से हुई लग रही थी। पुलिस भालू के हमले की संभावना की जांच कर रही है। शहर के अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय शिकारियों की इलाके में गश्त लगाने की योजना है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 10वें पाठ में सीखेंगे दाम पूछना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो अपनी सहेली आयाका के साथ विद्युत उपकरणों की दुकान में आई है। ताम बाल सुखाने का ड्रायर खरीदना चाहती है।
0: तो आइए सुनते हैं 10वें पाठ की बातचीत।
2: तकसान अरिमास ने।
3: सुगोई देशो। कोरे वा सरासरा हेया। कोरे वा त्सुया गा देरु टाइप।
2: हे, इकुरा देसु का?
3: सेलु त्ते काइते अरु। कीते मियो।
2: सुमिमासेन। このドライヤーはいくらですか
4: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: दुकान में तरह तरह के ड्रायर देखकर ताम सोच में पड़ गई। उसने कहा,
2: たくさんありますね。
1: बहुत सारे हैं।
0: तब आयाका बोली,
3: すごいでしょ。
1: बढ़िया है ना?
0: फिर आयाका ताम को तरह तरह के ड्रायर दिखाने लगी।
3: कोरे वा सरा सरा हेया।
1: ये बालों को रेशमी बनाता है।
3: कोरे वा त्सुयांगा देरु टाइप।
1: इससे बालों में चमक आती है।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: हे, इकुरा देसु का?
1: अच्छा, कितने का है?
0: आयाका ने ड्रायर पर लगी पर्ची देखी, लेकिन उस पर लाल रंग से केवल सेल लिखा हुआ था। उसने कहा,
3: सेरु त्ते काइते अरु।
1: सेल लिखा हुआ है।
3: कीते मियो?
1: पूछते हैं।
0: ताम ने दुकानदार को आवाज लगाई,
2: すみません।
1: माफ कीजिए,
2: このドライヤーはいくらですか?
1: ये ड्रायर कितने का है?
0: दुकानदार ने बताया,
4: 9900 円です。
0: 9900 円का।
1: ये सुनकर ताम हैरान होकर बोली,
2: え、高すぎます。
1: ओह, बहुत महंगा है।
0: ताम ने ड्रायर के दाम तो पूछ लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत महंगा था।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: このドライヤーはいくらですか?
1: यानी ये ड्रायर कितने का है? ये वाक्य याद करके आप खरीदारी करते समय दाम पूछ सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: この
0: का अर्थ है ये,
5: ドライヤ
0: ー का मतलब है बाल सुखाने का ड्रायर,
5: वा
0: वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, और
5: いくら
0: का अर्थ है कितने का।
1: आज के पाठ में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज का दाम पूछते समय जापानी में कहते हैं
5: इकुरा देसु का,
1: यानी कितने का है। तो आपको बस उस चीज की तरफ इशारा करना है जिसका नाम आप पूछना चाहते हैं और कहना है इकुरा देसु का।
0: इसके अलावा आप पिछले पाठों में सीखे संकेतवाचक सर्वनामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा संकेतवाचक सर्वनाम है
5: कोरे, सोरे, अरे,
0: यानी ये, वो या वो दूर। जैसे आपका वाक्य हो सकता है
5: これはいくらですか?
0: यानी ये कितने का है।
1: अगर आपको उस चीज का नाम पता हो तो आप
5: これ、それ、あれ
1: की जगह कह सकते हैं
5: この、その、あの
1: और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ड्रायर का दाम पूछना हो तो वाक्य बनेगा このドライヤーはいくらですか?यानी ये ड्रायर कितने का है।
0: तो अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए, सुनिए और दोहराइए।
5: このドライヤーはいくらですか?
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें ग्राहक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहा है।
3: すみません。この炊飯器はいくらですか?
4: 8700円です。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
3: すみません。
1: माफ कीजिए।
3: この炊飯器はいくらですか?
1: ये राइस कुकर कितने का है?
0: इस वाक्य में
5: 炊飯器
0: का अर्थ है राइस कुकर।
1: जवाब में दुकानदार ने कहा,
4: 8700 円です。
0: 8700円か。
6: 円
1: का मतलब है जापान की मुद्रा येन।
0: तो फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: अब वाक्य बनाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में ऊंची शेल्फ पर रखे ईयरफोन का दाम पूछना चाहते हैं। चीज आपसे और दुकानदार से दूर रखी है, इसलिए उसके नाम से पहले लगाएंगे
5: अनो,
1: और ईयरफोन का जापानी उच्चारण है
5: इयाहोन।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज की बातचीत में दुकानदार ने ड्रायर का दाम बताया। इससे पहले हम 10 तक की गिनती सीख चुके हैं, आज कुछ बड़ी संख्याएं सीखते हैं।
1: पहले दो अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। 20 से लेकर 90 तक के 10 के गुणकों को जापानी भाषा में बोलने के लिए 2 से 9 तक की संख्याओं के साथ
5: जू
1: यानी 10 जोड़ते हैं।
0: अगर 20 कहना है तो उसके पहले बोलेंगे नी यानी 2 और उसके बाद जू यानी 10, तो बन जाएगा नी जू।
1: तो जापानी भाषा में 10 से लेकर 90 तक 10 के गुणक हैं
5: जू, निजू, सांजू, योंजू, गोजू, रुकुजू, ननाजू, हचीजू, क्यूजू।
0: अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की। 100 को जापानी में कहते हैं
5: 100।
0: 100 के गुणक बनाने के लिए भी
5: 100
0: से पहले 2 से 9 की संख्याएं जोड़ी जाती हैं।
1: इसलिए जापानी में 200 बोलने के लिए नी के बाद 100 जोड़कर बनेगा निहाकु।
0: लेकिन कुछ संख्याओं के साथ उच्चारण बदल जाता है, जैसे 300 है
5: 300,
0: 600 है
5: 600
0: और 800 है
5: 800।
1: अब 1000 की गिनती सीखते हैं। 1000 को कहते हैं
5: सेन,
1: और उसके गुणक बनाने के लिए भी सेन से पहले 2 से 9 तक के अंक लगाए जाते हैं।
0: यहाँ भी कुछ संख्याओं का उच्चारण बदलता है। 3000 को कहते हैं
5: सानजें
0: और 8000 को कहते हैं
5: हसें।
1: बड़ी संख्याएं बोलने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को क्रम में बोलते हैं, जैसे 1234 को जापानी भाषा में कहेंगे
5: 1234।
0: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
3: ハルさんの知恵袋。
0: अब बारी है हारू जी की सलाह की। आज हम बताएंगे जापान के नोट और सिक्कों के बारे में।
1: जापान में 4 तरह के नोट हैं। 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन के।
0: जापान के लोग नए नोट पसंद करते हैं। शादी या अन्य खुशी के अवसरों पर उपहार में पैसे देते समय नए नोट देना उचित माना जाता है। उपहार में पैसे देने के लिए यहाँ खास लिफाफे मिलते हैं, लोग उनमें नए नोट डालकर भेंट करते हैं।
1: इसके अलावा जापान में 6 तरह के सिक्के हैं। 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन के। वेंडिंग मशीनों में 1 और 5 येन के सिक्के नहीं चलते, उनका इस्तेमाल दुकान से खरीदारी करते समय ही हो सकता है। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम आसाकुसा जाएंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 8 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कवानो से सुने समाचार। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने बृहस्पतिवार को बताया कि निर्देशित मिसाइलों से लैस उसके 3 विध्वंसक पोतों पर ईरान की ओर से बिना किसी उकसावे के हमला हुआ है। कमान के अनुसार सभी खतरों को बेअसर कर दिया गया है और जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। केंद्रीय कमान ने बताया कि ये जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य से ओमान की खाड़ी की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें ईरानी मिसाइलों, ड्रोन विमानों और छोटी नौकाओं ने निशाना बनाया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, कमान केंद्रों और निगरानी सुविधाओं पर हमले किए। अब तक इससे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज़ को बताया कि ये सैन्य कदम महज एक हल्का सा प्रहार था। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम अब भी लागू है। उधर ईरान के कई मीडिया केंद्र इससे अलग खबर दे रहे हैं। मीडिया केंद्रों ने सेना की केंद्रीय कमान के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि अमेरिका ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। प्रवक्ता के अनुसार अमेरिकी सेना ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की ओर जा रहे एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया और संयुक्त अरब अमीरात के फुजायरा बंदरगाह के पास एक अन्य जहाज़ को निशाना बनाया। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के अधिकारी अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति योजना पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से इस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अब तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हालिया वार्ता में शत्रुता समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी प्रस्ताव पर अब भी विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार के साथ फ़ोन पर हुई बातचीत में उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट में अरागची ने शांति योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। रॉयटर्स के अनुसार दोनों पक्ष एक अस्थायी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। रॉयटर्स का कहना है कि ये किसी व्यापक समझौते की बजाय एक अल्पकालिक ज्ञापन होगा। समाचार पत्र के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित सभी विवादित मुद्दे अनसुलझे रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को

सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन से चर्चा की और वे दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। होर्मुज जलडमरू मध्य की व्यावहारिक नाकाबंदी के बीच जापान और यूरोपीय संघ ने अहम समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने के मुद्दे पर सहयोग की पुष्टि की है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बृहस्पतिवार को ब्रसल्स में उच्च स्तरीय आर्थिक संवाद नामक मंत्री स्तरीय बैठक के लिए एकत्र हुए। बैठक में जापान के अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसे और यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं औद्योगिक नीति के प्रभारी स्टेफान सेजुर्ने ने भाग लिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि जापान और यूरोपीय संघ ने सुरक्षित नौवहन और अहम समुद्री मार्गों व बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सहित निर्बाध व्यापार प्रवाह के महत्व की पुष्टि की। वक्तव्य के अनुसार जापान और यूरोपीय संघ ने निर्यात नियंत्रण उपायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित, गैर भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं तौर तरीकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का महत्व दोहराया। वक्तव्य के अनुसार इससे विशेष रूप से अहम खनिज आपूर्ति श्रृंखला सहित सामरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान से बचने में मदद मिलेगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: एक अमरीकी व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में जो 10% का वैश्विक आयात शुल्क लागू किया था वो अवैध है। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ये फैसला सुनाया। ट्रंप प्रशासन ने व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग करते हुए कई देशों और क्षेत्रों पर ये शुल्क लगाया था। फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप के व्यापक वैश्विक शुल्क रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ये शुल्क प्रतिस्थापन उपाय के रूप में लागू किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि तथाकथित परस्पर शुल्क सहित व्यापक शुल्क लगाने के लिए ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम को लागू करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। धारा 122 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बड़े और गंभीर व्यापार घाटे से निपटने के लिए 150 दिनों तक 15% तक का शुल्क लगा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रंप धारा 122 लागू करने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। जापान में इस साल खसरे के मामलों की संख्या 400 का आंकड़ा पार कर गई है, जो 2019 में इसी अवधि में दर्ज संख्या के लगभग बराबर है। गौरतलब है कि 2019 में दशक के सर्वाधिक मामले सामने आए थे। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस से होता है जो हवा से फैल सकता है। इससे बुखार, खांसी और त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं और गंभीर मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। जापान स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थान के अनुसार 26 अप्रैल तक के एक सप्ताह में खसरे के 68 मामले सामने आए, जिससे इस वर्ष कुल मामलों की संख्या 436 हो गई। संस्थान का अनुमान है कि इनमें से 70% लोग जापान के बाहर से आए वायरस से संक्रमित हुए। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जापान में खसरे के पूर्ण उन्मूलन की पुष्टि की थी। उत्तरी जापान के पहाड़ों में बेहोश पाई गई एक महिला की मौत हो गई है। मौत का कारण भालू का हमला हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इवाते प्रीफेक्चर के हाचीमानताई शहर की 69 वर्षीय कुमागाई चियो को बुधवार को जड़ी बूटियां चुनने पहाड़ी जंगल में गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गईं। पुलिस और बचाव दल ने बृहस्पतिवार सुबह उस जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया जहां महिला की कार खड़ी मिली। सुबह करीब 8 बजे उन्हें वो महिला जमीन पर पड़ी मिली। महिला के चेहरे और सिर पर चोटें थी जो किसी वन्य जीव के पंजों से हुई लग रही थी। पुलिस भालू के हमले की संभावना की जांच कर रही है। शहर के अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय शिकारियों की इलाके में गश्त लगाने की योजना है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 10वें पाठ में सीखेंगे दाम पूछना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो अपनी सहेली आयाका के साथ विद्युत उपकरणों की दुकान में आई है। ताम बाल सुखाने का ड्रायर खरीदना चाहती है।
0: तो आइए सुनते हैं 10वें पाठ की बातचीत।
2: तकसान आरिमास ने।
3: सुगोई देशो। कोरे वा सरा सरा हेया। कोरे वा ट्सुया गा देरु टाइप।
2: हे, इकुरा देसु का?
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか
4: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: दुकान में तरह तरह के ड्रायर देखकर ताम सोच में पड़ गई। उसने कहा,
2: たくさんありますね。
1: बहुत सारे हैं।
0: तब आयाका बोली,
3: सुगोई देशो,
1: बढ़िया है ना?
0: फिर आयाका ताम को तरह तरह के ड्रायर दिखाने लगी।
3: कोरे वा सरा सरा हेया।
1: ये बालों को रेशमी बनाता है।
3: कोरे वा त्सुयांगा देरु टाइप।
1: इससे बालों में चमक आती है।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: हे, इकुरा देसु का?
1: अच्छा, कितने का है?
0: आयाका ने ड्रायर पर लगी पर्ची देखी, लेकिन उस पर लाल रंग से केवल सेल लिखा हुआ था। उसने कहा,
3: सेल उत्ते काइते आरु।
1: सेल लिखा हुआ है।
3: कीते मियो?
1: पूछते हैं।
0: ताम ने दुकानदार को आवाज लगाई,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: कोनो ड्रायर वा इकुरा देसु का?
1: ये ड्रायर कितने का है?
0: दुकानदार ने बताया,
4: 9900円です।
0: 9900円का।
1: ये सुनकर ताम हैरान होकर बोली, ओह, बहुत महंगा है।
0: ताम ने ड्रायर के दाम तो पूछ लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत महंगा था।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: このドライヤーはいくらですか?
1: यानी ये ड्रायर कितने का है? ये वाक्य याद करके आप खरीदारी करते समय दाम पूछ सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: この
0: का अर्थ है ये,
5: ड्रायर
0: का मतलब है बाल सुखाने का ड्रायर,
5: वा
0: वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, और
5: इकुरा
0: का अर्थ है कितने का।
1: आज के पाठ में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज का दाम पूछते समय जापानी में कहते हैं
5: इकुरा देसु का,
1: यानी कितने का है। तो आपको बस उस चीज की तरफ इशारा करना है जिसका नाम आप पूछना चाहते हैं और कहना है इकुरा देसु का।
0: इसके अलावा आप पिछले पाठों में सीखे संकेतवाचक सर्वनामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा संकेतवाचक सर्वनाम है
5: कोरे, सोरे, अरे,
0: यानी ये, वो या वो दूर। जैसे आपका वाक्य हो सकता है
5: कोरे वा इकुरा देसु का,
0: यानी ये कितने का है।
1: अगर आपको उस चीज का नाम पता हो तो आप
5: कोरे, सोरे, अरे
1: की जगह कह सकते हैं
5: कोनो, सोनो, अनो
1: और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ड्रायर का दाम पूछना हो तो वाक्य बनेगा कोनो दोराइया वा इकुरा देसु का, यानी ये ड्रायर कितने का है।
0: तो अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए, सुनिए और दोहराइए
5: कोनो दोराइया वा इकुरा देसु का।

0: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें ग्राहक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहा है।
1: すみません、この炊飯器はいくらですか
2: ?8700 円です。
3: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा
1: すみません。
0: माफ कीजिए।
1: この炊飯器はいくらですか
0: ये राइस कुकर कितने का है?
3: इस वाक्य में
4: 炊飯器
3: का अर्थ है राइस कुकर।
0: जवाब में दुकानदार ने कहा
2: 8700 円です。
3: 8700 येन का।
4: एन
0: का मतलब है जापान की मुद्रा येन।
3: तो फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: अब वाक्य बनाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में ऊंची शेल्फ पर रखे ईयरफोन का दाम पूछना चाहते हैं। चीज आपसे और दुकानदार से दूर रखी है, इसलिए उसके नाम से पहले लगाएंगे
4: अनो,
0: और ईयरफोन का जापानी उच्चारण है
4: इयाहोन।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: すみません、あのイヤホンはいくらですか?
3: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज की बातचीत में दुकानदार ने ड्रायर का दाम बताया। इससे पहले हम 10 तक की गिनती सीख चुके हैं, आज कुछ बड़ी संख्याएं सीखते हैं।
0: पहले दो अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। 20 से लेकर 90 तक के 10 के गुणकों को जापानी भाषा में बोलने के लिए 2 से 9 तक की संख्याओं के साथ
4: जू
0: यानी 10 जोड़ते हैं।
3: अगर 20 कहना है तो उसके पहले बोलेंगे नी यानी 2 और उसके बाद जू यानी 10, तो बन जाएगा नी जू।
0: तो जापानी भाषा में 10 से लेकर 90 तक 10 के गुणक हैं
4: जू, निजू, सांजू, योंजू, गोजू, रुकुजू, ननाजू, हचीजू, क्यूजू।
3: अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की। 100 को जापानी में कहते हैं 100 के गुणक बनाने के लिए भी
4: 100
3: से पहले 2 से 9 की संख्याएं जोड़ी जाती हैं।
0: इसलिए जापानी में 200 बोलने के लिए नी के बाद 100 जोड़कर बनेगा नी 100।
3: लेकिन कुछ संख्याओं के साथ उच्चारण बदल जाता है, जैसे 300 है
4: 300,
3: 600 है
4: 600
3: और 800 है
4: 800।
0: अब 1000 की गिनती सीखते हैं। 1000 को कहते हैं
4: सेन,
0: और उसके गुणक बनाने के लिए भी सेन से पहले 2 से 9 तक के अंक लगाए जाते हैं।
3: यहाँ भी कुछ संख्याओं का उच्चारण बदलता है। 3000 को कहते हैं
4: सानजेंग
3: और 8000 को कहते हैं
4: हसेंग।
0: बड़ी संख्याएं बोलने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को क्रम में बोलते हैं, जैसे 1234 को जापानी भाषा में कहेंगे
4: सेन निहाकु सांजु योंग।
3: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
6: तकसान अरिमास ने
7: सुगोई देशो कोरे वा सारा सारा हेया कोरे वा त्सुया गा देरु टाइप
6: हे इकुरा देसु का
7: सेलु त्ते काइते अरु कीते मियो मी यो
6: すみません。このドライヤーはいくらですか
8: ?9900 円です。
6: え、高すぎます。
9: ハルさんの知恵袋。
3: अब बारी है हारू जी की सलाह की। आज हम बताएंगे जापान के नोट और सिक्कों के बारे में।
0: जापान में 4 तरह के नोट हैं। 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन के।
3: जापान के लोग नए नोट पसंद करते हैं। शादी या अन्य खुशी के अवसरों पर उपहार में पैसे देते समय नए नोट देना उचित माना जाता है। उपहार में पैसे देने के लिए यहाँ खास लिफाफे मिलते हैं, लोग उनमें नए नोट डालकर भेंट करते हैं।
0: इसके अलावा जापान में 6 तरह के सिक्के हैं, 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन के। वेंडिंग मशीनों में 1 और 5 येन के सिक्के नहीं चलते, उनका इस्तेमाल दुकान से खरीदारी करते समय ही हो सकता है। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम असाकुसा जाएंगी, तब तक के लिए
0: सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। एक अमरीकी तजारती अदालत ने फैसला दिया है कि फरवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा 10% आलमी टैरिफ गैर कानूनी है। अमरीकी अदालत बराए बैन अक्वामी तजारत ने जुमेरात को ये फैसला सुनाया। ट्रंप इंतजामिया ने तजारती एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए वसीतर ममालिक और खित्तों पर यह महसूल आयद किया था। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रंप के बड़े पैमाने के आलमी टैरिफ को ख़त्म करने के बाद इस ड्यूटी को मुतबादल इकदाम के तौर पर मुतारफ कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ट्रंप ने इंटरनेशनल एमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर महसूलात आयद करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इनमें वो महसूलात भी शामिल हैं जिन्हें ट्रंप जवाबी टैरिफ कहते हैं। सेक्शन 122 कहता है कि अदायगियों के तवाजुन में बड़े और संगीन खसारे से निमटने के लिए सदर 150 दिनों तक 15% तक टैरिफ आयद कर सकता है। मुद्दयान ने दलील दी कि ट्रंप ने सेक्शन 122 के निफाज के तकाजों को पूरा नहीं किया। इस साल जापान के खसरा के केसेस की तादाद पहले ही 400 से तजावुज़ कर चुकी है, जो 2019 में इसी अरसे में रिकॉर्ड शुदा सतह के करीब है। वाज़ेह रहे कि मस्कूरा साल गुज़िश्ता दिहाई के सबसे ज़्यादा केसेस वाला साल था। खसरा एक इंतहाई मुतअद्दी वायरस की वजह से होता है जो हवा के ज़रिए फैल सकता है। ये बुखार, खांसी और ख़ारिश का सबब बनता है और शदीद सूरतों में जानलेवा साबित हो सकता है। जापान इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ सिक्योरिटी का कहना है कि 26 अप्रैल तक के हफ्ते के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 68 तक पहुंच गई, जिससे इस साल की मजमूई तादाद 436 हो गई। इंस्टीट्यूट का अंदाज़ा है कि इनमें से 70% लोग मुल्क के अंदर उस वायरस से मुतासर हुए जो जापान में लाया गया था। 2015 में WHO ने तस्दीक की थी कि जापान ने खसरे को ख़त्म कर दिया है।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9।

जिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने बृहस्पतिवार को बताया कि निर्देशित मिसाइलों से लैस उसके तीन विध्वंसक पोतों पर ईरान की ओर से बिना किसी उकसावे के हमला हुआ है। कमान के अनुसार सभी खतरों को बेअसर कर दिया गया है और जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। केंद्रीय कमान ने बताया कि ये जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य से ओमान की खाड़ी की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें ईरानी मिसाइलों, ड्रोन विमानों और छोटी नौकाओं ने निशाना बनाया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, कमान केंद्रों और निगरानी सुविधाओं पर हमले किए। अब तक इससे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज़ को बताया कि ये सैन्य कदम महज एक हल्का सा प्रहार था। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम अब भी लागू है। उधर ईरान के कई मीडिया केंद्र इससे अलग खबर दे रहे हैं। मीडिया केंद्रों ने सेना की केंद्रीय कमान के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि अमेरिका ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। प्रवक्ता के अनुसार अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य की ओर जा रहे एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया और संयुक्त अरब अमीरात के फुजायरा बंदरगाह के पास एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के अधिकारी अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति योजना पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से इस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अब तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हालिया वार्ता में शत्रुता समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी प्रस्ताव पर अब भी विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार के साथ फ़ोन पर हुई बातचीत में उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट में अरागची ने शांति योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। रॉयटर्स के अनुसार दोनों पक्ष एक अस्थायी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। रॉयटर्स का कहना है कि ये किसी व्यापक समझौते की बजाय एक अल्पकालिक ज्ञापन होगा। समाचार पत्र के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित सभी विवादित मुद्दे अनसुलझे रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन से चर्चा की और वे दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। होर्मुज जलडमरू मध्य की व्यावहारिक नाकाबंदी के बीच जापान और यूरोपीय संघ ने अहम समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने के मुद्दे पर सहयोग की पुष्टि की है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बृहस्पतिवार को ब्रसल्स में उच्च स्तरीय आर्थिक संवाद नामक मंत्री स्तरीय बैठक के लिए एकत्र हुए। बैठक में जापान के अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसे और यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं औद्योगिक नीति के प्रभारी स्टेफान सेजुर्ने ने भाग लिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि जापान और यूरोपीय संघ ने सुरक्षित नौवहन और अहम समुद्री मार्गों व बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सहित निर्बाध व्यापार प्रवाह के महत्व की पुष्टि की। वक्तव्य के अनुसार जापान और यूरोपीय संघ ने निर्यात नियंत्रण उपायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित, गैर भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं तौर तरीकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का महत्व दोहराया। वक्तव्य के अनुसार इससे विशेष रूप से अहम खनिज आपूर्ति श्रृंखला सहित सामरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान से बचने में मदद मिलेगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: एक अमरीकी व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप ने फरवरी में जो 10% का वैश्विक आयात शुल्क लागू किया था वो अवैध है। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ये फैसला सुनाया। ट्रंप प्रशासन ने व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग करते हुए कई देशों और क्षेत्रों पर ये शुल्क लगाया था। फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप के व्यापक वैश्विक शुल्क रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ये शुल्क प्रतिस्थापन उपाय के रूप में लागू किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि तथाकथित परस्पर शुल्क सहित व्यापक शुल्क लगाने के लिए ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम को लागू करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। धारा 122 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बड़े और गंभीर व्यापार घाटे से निपटने के लिए 150 दिनों तक 15% तक का शुल्क लगा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रंप धारा 122 लागू करने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। जापान में इस साल खसरे के मामलों की संख्या 400 का आंकड़ा पार कर गई है, जो 2019 में इसी अवधि में दर्ज संख्या के लगभग बराबर है। गौरतलब है कि 2019 में दशक के सर्वाधिक मामले सामने आए थे। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस से होता है जो हवा से फैल सकता है। इससे बुखार, खांसी और त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं और गंभीर मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। जापान स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थान के अनुसार 26 अप्रैल तक के एक सप्ताह में खसरे के 68 मामले सामने आए, जिससे इस वर्ष कुल मामलों की संख्या 436 हो गई। संस्थान का अनुमान है कि इनमें से 70% लोग जापान के बाहर से आए वायरस से संक्रमित हुए। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जापान में खसरे के पूर्ण उन्मूलन की पुष्टि की थी। उत्तरी जापान के पहाड़ों में बेहोश पाई गई एक महिला की मौत हो गई है। मौत का कारण भालू का हमला हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इवाते प्रीफेक्चर के हाचीमानताई शहर की 69 वर्षीय कुमागाई चियो को बुधवार को जड़ी बूटियां चुनने पहाड़ी जंगल में गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। पुलिस और बचाव दल ने बृहस्पतिवार सुबह उस जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया जहां महिला की कार खड़ी मिली। सुबह करीब 8 बजे उन्हें वो महिला जमीन पर पड़ी मिली। महिला के चेहरे और सिर पर चोटें थीं, जो किसी वन्य जीव के पंजों से हुई लग रही थी। पुलिस भालू के हमले की संभावना की जांच कर रही है। शहर के अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय शिकारियों की इलाके में गश्त लगाने की योजना है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 10वें पाठ में सीखेंगे दाम पूछना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो अपनी सहेली आयाका के साथ विद्युत उपकरणों की दुकान में आई है। ताम बाल सुखाने का ड्रायर खरीदना चाहती है।
0: तो आइए सुनते हैं 10वें पाठ की बातचीत।
2: तकसान अरिमास ने।
3: सुगोई देशो। कोरे वा सरासरा हेयर। कोरे वा ट्सुया गा देरु टाइप।
2: हे, इकुरा देसु का?
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか
4: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: दुकान में तरह तरह के ड्रायर देखकर ताम सोच में पड़ गई। उसने कहा,
2: たくさんありますね。
1: बहुत सारे हैं।
0: तब आयाका बोली,
3: सुगोई देशो।
1: बढ़िया है ना?
0: फिर आयाका ताम को तरह तरह के ड्रायर दिखाने लगी।
3: कोरे वा सरा सरा हेया।
1: ये बालों को रेशमी बनाता है।
3: कोरे वा त्सुयांगा देरु टाइप।
1: इससे बालों में चमक आती है।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: हे, इकुरा देसु का?
1: अच्छा, कितने का है?
0: आयाका ने ड्रायर पर लगी पर्ची देखी, लेकिन उस पर लाल रंग से केवल सेल लिखा हुआ था। उसने कहा,
3: सेल उत्ते काइते आरु।
1: सेल लिखा हुआ है।
3: कीते मियो?
1: पूछते हैं।
0: ताम ने दुकानदार को आवाज लगाई,
2: すみません।
1: माफ कीजिए,
2: कोनो ड्रायर वा इकुरा देसु का?
1: ये ड्रायर कितने का है?
0: दुकानदार ने बताया,
4: 9900円です।
0: 9900円का।
1: ये सुनकर ताम हैरान होकर बोली, ओह, बहुत महंगा है।
0: ताम ने ड्रायर के दाम तो पूछ लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत महंगा था।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: このドライヤーはいくらですか?
1: यानी ये ड्रायर कितने का है? ये वाक्य याद करके आप खरीदारी करते समय दाम पूछ सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: この
0: का अर्थ है ये,
5: ड्रायर
0: का मतलब है बाल सुखाने का ड्रायर,
5: वा
0: वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, और
5: इकुरा
0: का अर्थ है कितने का।
1: आज के पाठ में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज का दाम पूछते समय जापानी में कहते हैं
5: इकुरा देसु का,
1: यानी कितने का है। तो आपको बस उस चीज की तरफ इशारा करना है जिसका नाम आप पूछना चाहते हैं और कहना है इकुरा देसु का।
0: इसके अलावा आप पिछले पाठों में सीखे संकेतवाचक सर्वनामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा संकेतवाचक सर्वनाम है
5: कोरे, सोरे, अरे,
0: यानी ये, वो या वो दूर। जैसे आपका वाक्य हो सकता है
5: कोरे वा इकुरा देसु का,
0: यानी ये कितने का है।
1: अगर आपको उस चीज का नाम पता हो तो आप
5: कोरे, सोरे, अरे
1: की जगह कह सकते हैं
5: कोनो, सोनो, अनो,
1: और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ड्रायर का दाम पूछना हो तो वाक्य बनेगा कोनो दोराइया वा इकुरा देसु का, यानी ये ड्रायर कितने का है।
0: तो अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए। सुनिए और दोहराइए,
5: कोनो दोराइया वा इकुरा देसु का।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें ग्राहक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहा है।
3: すみません、この炊飯器はいくらですか
4: ？8700円です。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
3: すみません、
1: माफ कीजिए,
3: この炊飯器はいくらですか？
1: ये राइस कुकर कितने का है?
0: इस वाक्य में
5: सुईहांकी
0: का अर्थ है राइस कुकर।
1: जवाब में दुकानदार ने कहा,
4: 8700 円です。
0: 8700円か。
6: 円
1: का मतलब है जापान की मुद्रा येन।
0: तो फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: अब वाक्य बनाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में ऊंची शेल्फ पर रखे ईयरफोन का दाम पूछना चाहते हैं। चीज आपसे और दुकानदार से दूर रखी है, इसलिए उसके नाम से पहले लगाएंगे
5: अनो,
1: और ईयरफोन का जापानी उच्चारण है
5: इयाहोन।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज की बातचीत में दुकानदार ने ड्रायर का दाम बताया। इससे पहले हम 10 तक की गिनती सीख चुके हैं, आज कुछ बड़ी संख्याएं सीखते हैं।
1: पहले दो अंकों की संख्याओं की बात करते हैं।

0: से लेकर 90 तक के 10 के गुणकों को जापानी भाषा में बोलने के लिए 2 से 9 तक की संख्याओं के साथ
1: जी
0: यानी 10 जोड़ते हैं।
2: अगर 20 कहना है तो उसके पहले बोलेंगे नी यानी 2 और उसके बाद जू यानी 10, तो बन जाएगा नी जू।
0: तो जापानी भाषा में 10 से लेकर 90 तक 10 के गुणक हैं
1: जू, निजू, सांजू, योंजू, गोजू, रोकुजू, नानाजू, हाचीजू, क्यूजू।
2: अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की। 100 को जापानी में कहते हैं
1: 100।
2: 100 के गुणक बनाने के लिए भी
1: 100
2: से पहले 2 से 9 की संख्याएं जोड़ी जाती हैं।
0: इसलिए जापानी में 200 बोलने के लिए नी के बाद 100 जोड़कर बनेगा नी 100।
2: लेकिन कुछ संख्याओं के साथ उच्चारण बदल जाता है, जैसे 300 है
1: 300,
2: 600 है
1: 600
2: और 800 है
1: 800।
0: अब 1000 की गिनती सीखते हैं। 1000 को कहते हैं
1: सेन
0: और उसके गुणक बनाने के लिए भी सेन से पहले 2 से 9 तक के अंक लगाए जाते हैं।
2: यहाँ भी कुछ संख्याओं का उच्चारण बदलता है। 3000 को कहते हैं
1: सानजें
2: और 8000 को कहते हैं
1: हासें।
0: बड़ी संख्याएं बोलने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को क्रम में बोलते हैं, जैसे 1234 को जापानी भाषा में कहेंगे
1: सेन निहाकु सांजू योंग।
2: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
3: तकसान अरिमासु ने।
4: सुगोई देशो। कोरे वा सरासरा हेया। これはツヤが出るタイプ。
3: へえ、いくらですか？
4: セールって書いてある。聞いてみよう。
3: すみません。このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円です。
3: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
2: अब बारी है हारू जी की सलाह की। आज हम बताएंगे जापान के नोट और सिक्कों के बारे में।
0: जापान में 4 तरह के नोट हैं, 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन के।
2: जापान के लोग नए नोट पसंद करते हैं। शादी या अन्य खुशी के अवसरों पर उपहार में पैसे देते समय नए नोट देना उचित माना जाता है। उपहार में पैसे देने के लिए यहाँ खास लिफाफे मिलते हैं, लोग उनमें नए नोट डालकर भेंट करते हैं।
0: इसके अलावा जापान में 6 तरह के सिक्के हैं, 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन के। वेंडिंग मशीनों में 1 और 5 येन के सिक्के नहीं चलते, उनका इस्तेमाल दुकान से खरीदारी करते समय ही हो सकता है। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम असाकुसा जाएंगी, तब तक के लिए
0: सायोनारा।

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। एक अमरीकी तजारती अदालत ने फैसला दिया है कि फरवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा 10% आलमी टैरिफ गैर कानूनी है। अमरीकी अदालत बराए बैन अवी तजारत ने जमेरात को ये फैसला सुनाया। ट्रंप इंतजामिया ने तजारती एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए वसीतर ममालिक और ख़ितों पर यह महसूल आयद किया था। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रंप के बड़े पैमाने के आलमी टैरिफ को ख़त्म करने के बाद इस ड्यूटी को मुतबादल इकदाम के तौर पर मुतारफ कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ट्रंप ने इंटरनेशनल एमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर महसूलात आयद करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इनमें वो महसूलात भी शामिल हैं जिन्हें ट्रंप जवाबी टैरिफ कहते हैं। सेक्शन 122 कहता है कि अदायगियों के तवाज़ुन में बड़े और संगीन खसारे से निमटने के लिए सदर 150 दिनों तक 15% तक टैरिफ आयद कर सकता है। मुद्दयान ने दलील दी कि ट्रंप ने सेक्शन 122 के नफाज के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। इस साल जापान के खसरा के केसेस की तादाद पहले ही 400 से तजावुज़ कर चुकी है, जो 2019 में इसी अरसे में रिकॉर्ड शुदा सतह के करीब है। वाज रहे कि मस्कूरा साल गुज़िश्ता दिहाई के सबसे ज़्यादा केसेस वाला साल था। खसरा एक इंतहाई मुतअद्दी वायरस की वजह से होता है जो हवा के ज़रिए फैल सकता है। ये बुखार, खांसी और ख़ारिश का सबब बनता है और शदीद सूरतों में जानलेवा साबित हो सकता है। जापान इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ सिक्योरिटी का कहना है कि 26 अप्रैल तक के हफ्ते के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 68 तक पहुंच गई, जिससे इस साल की मजमूई तादाद 436 हो गई। इंस्टीट्यूट का अंदाज़ा है कि इनमें से 70% लोग मुल्क के अंदर उस वायरस से मुतासर हुए जो जापान में लाया गया था। 2015 में WHO ने तस्दीक की थी कि जापान ने खसरे को ख़त्म कर दिया है। शिमाली जापान के पहाड़ों में बेहोशी की हालत में मिलने वाली खातून की मौत हो गई है। इसकी वजह रीछ का हमला हो सकता है। पुलिस का कहना है कि 69 साला कुमागाई चियो को इवाते प्रीफेक्चर के हाचिमान ताई शहर में बुध के रोज़ खुर्दनी जंगली पौधे चुनने के लिए पहाड़ी जंगल में जाने के बाद लापता हो गई थी। पुलिस और इमदादी कारकुनों ने जुमेरात की सुबह जंगल के उस मकाम से तलाश शुरू की जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने मस्कूरा खातून को सुबह 8 बजे के कुछ देर बाद ज़मीन पर पड़ा पाया। मुबैना तौर पर खातून के चेहरे और सर पर ज़ख्म थे जो बज़ाहिर किसी जानवर के पंजों के लगते हैं। पुलिस रीछ के हमले के इम्कान की तहकीकात कर रही है। शहर के हुक्काम का कहना है कि मकामी शिकारियों की जानिब से जुमे की सुबह से इलाके में गश्त शुरू करने की तवक्को है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जुमरात को कहा कि इसके 3 गाइडेड मिसाइल तबाहकुन जहाज ईरान के बिला इश्तियाल हमले की जद में आए। ईरान में हुक्काम अमरीका की तरफ से पेश किए गए अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। और इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।